98.3 Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा

अगर आप एज अ गर्ल अपसेट हैं और शिकार हैं उस बंदे के जो आपकी जिंदगी में है प्रिटेंडिंग टू बी योर बॉयफ्रेंड, जिसे सब पता है अबाउट कार्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्टॉक्स, लेकिन उसे सिर्फ ये नहीं पता व्हाई यू आर अपसेट एंड नाउ यू एक्चुअली फील लाइक डंपिंग हिम, आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड डू दैट सिस्टर. लेकिन बिफोर यू एक्चुअली डू दैट, लेट्स कंपेयर नोट्स, बिकॉज ऐसे एपिक बंदों को डेट करके अपने ब्रेन सेल्स को खराब करते हुए मैंने इसे एक ओलंपिक स्पोर्ट बना दिया है. एंड व्हाट बेटर प्रोफेशनल टू डिस्कस दिस विद देन आई. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और अगर आपकी भी जिंदगी में आपका बॉयफ्रेंड इतना ऑब्ट्यूज है दैट यू फील लाइक उसके पास आधा फंक्शनल ब्रेन सेल भी नहीं है, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट. एंड ऑन दैट नोट, व्हाइल यू हिट मी अप ऑन माय सोशल्स, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं। कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंड ट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं। उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का बॉलीवुड का सबसे डेफिनेटिव म्यूजिक काउंटडाउन। और आज का जो काउंटडाउन है वो भी एक म्यूजिकल जर्नी है, जहां मिलेंगे नए हिट्स, पुरानी यादें और उन गानों के पीछे छुपे वो राज जिन पर शायद आपने कभी उतना गौर नहीं किया। सो I've got you covered. Number 20 पर है Welcome to the Jungle का ये गाना, ऊंचा लंबा कद, which has been rehashed, लेकिन इस जर्नी की पहली धुन होगी कॉकटेल की माशूका। Turn the volume up. This is the Mirchi Top 20. Let's go.
0: Number 19.

0: तमन्ना भाटिया की एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह है, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ये गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस सॉन्ग लास्ट वीक, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है। बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी काल नाम की, जिसमें इस टेरिटरी को टच भी किया था। इट हैड जॉन अब्राहम, विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन, लेकिन उसके बाद टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स, एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं, और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय साळगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17। दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12 प्रीत

0: सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलेडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।
1: ये

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है, देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है, बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहाँ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का, माय पिक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Sureen ke saath only on Mirchi it's hot number 5।

0: कुछ फिल्ममेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूफ तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था, इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी कि हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड आल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है, किसने सोचा था, बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड आल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू
2: बंद

वारूम नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते। और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है, यह आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो गहने और वो घोड़े तो स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 yet again। नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: Suren ke saath only on Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। अ स्पेशल शाउट आउट ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। संजू राठौर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन बैंगल्स 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद रोमांस इज स्टिल इन द एयर, रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में। राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन है मुसाफिर कैफे से ये गाना, गाने का नाम है दरमिया ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल इज @RJ कनिका। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवा

0: बंजारे दी आर्टिस्ट की आवाज में, गाने का नाम है बैरन, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले साई और भयंकर का गाना राधिमा ने एंट्री मारी ऑन गाना नंबर 7। और गाना नंबर 8 पर था फरक दी आर्टिस्ट का तारे।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 6 पर हमने सुना बैरन, जो कि हरियाणवी भाषा में है। कभी कभी गाना आपको लैंग्वेज आने की वजह से नहीं पसंद आता, इट्स जस्ट अबाउट द म्यूजिक। एंड काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ये गाना दुनिया को एक मलयालम इंडिपेंडेंट सॉन्ग की तरह मिला। पिछले साल नवंबर में रिलीज हुआ था एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस गाने के मेकर्स ने भी सोचा होगा दैट दिस सॉन्ग विल बिकम सच अ बिग हिट। सोशल मीडिया रील से क्रॉसओवर होके दिस सॉन्ग बिकेम सो बिग दैट इस गाने में ऑफिशियल हिंदी रीमिक्स किया है श्रेया घोषाल ने। इफ यू नो यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्याणी का रीमिक्स। And I have to admit, I cannot stop listening to the song. Original गाना मलयालम में, लेकिन जो lyrics हैं, उसमें basically बात हो रही है एक लड़की की, उसकी smile, dimples, उसकी आंखें, incredible Afro R&B influenced production, and a uber modern groove. And then Shreya Ghoshal का hook takes this song to another level. I think that's the reason इस गाने में language का कोई barrier है ही नहीं, because it's all about the beat. अब Shreya Ghoshal की आवाज के साथ अर्जुन KDS Ron and 54 का गाना कल्याणी is playing right next for you. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके इट्स अ गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय
1: नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: कृष्णा एंड धंधा न्योलीवाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका। 3 हफ्तों से काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। पॉप म्यूजिक इज डेफिनेटली हैविंग इट्स बूम शाका मोमेंट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 5 पर हमने सुना कल्याणी। एक मलयालम गाने में श्रेया घोषाल ने अपना हिंदी रीमिक्स दिया है। द वर्ल्ड ऑफ पॉप म्यूजिक इज सो डाइवर्स दैट ये एक बॉक्स में आ ही नहीं सकता है। आप एक दिन क्लासिकल गा सकते हो, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक पॉप कोलैबोरेशन कर सकते हो, एन R&B सॉन्ग और अ फोक क्लासिकल। एक ही आर्टिस्ट ये हर तरह के म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड वो पॉप म्यूजिक उन्हें स्पेस देता है। एंड जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इतना एक्सपेरिमेंटल होते देखते हैं इन पॉप म्यूजिक, ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रेया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सर्टेन साउंड आ जाती है, फिल्म, बिग मेलेडीज, ऑर्केस्ट्रेशन, दैट अनमिस्टेकेबल वॉइस। वो वॉइस वही है बट शी हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद द सॉन्ग्स। फन फैक्ट, श्रेया घोषाल ने अपना पहला प्लेबैक गाना किया था विच वॉज बेरी पिया इन देवदास। उसको सुन के एवरीबडी वॉज लाइक हू इज दिस गर्ल, हमने इसको अभी तक कैसे नहीं सुना है। एंड आज 2026 में शी इज रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड बेरी पिया जो कि ओरिजिनल बेरी पिया से बिल्कुल अलग है। श्रेया घोषाल की आवाज वही है लेकिन प्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी है। इंडियन क्लासिकल के टचेस हैं, सितार हैं, बट द रिदम इज टू अपबीट एंड वेरी मॉडर्न। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। स्पेशल शाउट आउट टू बेरी पिया श्रेया घोषाल की आवाज में, अनुराग मिश्रा की कॉम्पोजिशन, आलोक रंजन अनुराग मिश्रा के लिरिक्स। बेरी पिया इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में दैट वाज बेरी पिया. श्रेया घोषाल इज स्टेपिंग आउटसाइड हर फेमिलियर सेटिंग्स एंड आप वो कदम लेने से डर रहे हैं. एट आरजे करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी. कोई गाने के बारे में कुछ भी सजेशन देना है बिंदास आके हिट मी अप. बैक ऑन द काउंटडाउन अगले वाले गाने की बारी. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना दिस इज बरसात. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी,
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए।
1: गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल, बाबुल सुप्रियो की आवाज में। 2003 में ये गाना रिलीज हुआ था। सामी मरूफ की कॉम्पोजिशन, फैज अनवर के लिरिक्स एंड बाबुल सुप्रियो की वो वार्म फजी स्लाइटली ड्रीमी आवाज। इस गाने में एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग है। आप किसी को पसंद करते हो, शायद उसे पता भी नहीं है, एंड आप बस इमेजिन करते रहते हो कि कभी उसका दिल मुझ पर भी आए तो। एंड कुछ तो बात है, अक्टूबर के माहौल में हवा चल रही है, आप कहीं से घर लौट रहे हो, फोन में कोई मैसेज नहीं है, यू आर स्माइलिंग एनीवे बिकॉज दिमाग में वही इंसान है। आई डोंट नो अबाउट यू, अक्टूबर रियली मेक्स मी डिल्यूशनल। वो वार्म फजी फीलिंग आ जाती है, बटरफ्लाइज थोड़ी ज्यादा फील होती है। एंड दिस सॉन्ग बाय बाबुल सुप्रियो इज द परफेक्ट साउंडट्रैक टू माय अक्टूबर इवनिंग। सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। थ्रोइंग बैक टू आवर क्लासिक्स, बाबुल सुप्रियो की आवाज में दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कुछ तो बात है यार हवा में, पता नहीं क्यों ये पुराने गाने अचानक ज्यादा अच्छे लगने लग गए बाबुल सुप्रियो की आवाज में। दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो गाना जो आज भी आपको लगता है कि दिस इज द सॉन्ग मैन, हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका है माई साउंड प्रोड्यूसर, हम आपके रिकमेंडेशन को बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। यू माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक। मिट्टा रॉर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद बादशाह की कॉम्पोजिशन है, इनका म्यूजिक शर्वी यादव, बादशाह का गाना, गाने का नाम है बैंगर। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बैंगर इज एट द टॉप। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। पंडी का नाम है कनिका, एंजॉय।

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे।

Mirchi. It's hot. Free.

Mirchi, it's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे, और अब

लाइफ में दो चीजों का वेट करोगे तो करते ही रह जाओगे, एक तो सुबह सुबह वर्कआउट करने का मोटिवेशन और दूसरा एक्स का वो आई एम सॉरी वाला मैसेज। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स, और अभी फिलहाल तुम कहीं से भी सुन रहे हो मेरी सारी देसी जनता, या तो तुम ट्रैफिक में फंसे हो या कॉफी के सहारे चल रही तुम्हारी लाइफ, या फिर ऑफिस के लैपटॉप के सामने बैठकर सीक्रेटली माँ के हाथ ये आलू के परौंठे याद कर रहे हो सुबह सुबह। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। अगले कुछ घंटों तक हम लोग साथ में रहने वाले, यानी कि मैं और तुम, मैं बोले तो प्रिसिला, लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स हर रोज, तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा ज्यादा मिर्चीदार बनाती हूँ। यहाँ पर लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व तो नहीं होने वाली है, लेकिन ये गारंटी है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें तुम भूल जाओगे, पोस्टपोन कर दोगे, या फिर उनका टेंशन लेना तुम कम कर दोगे, बिकॉज मेरे पास है तुम्हारे लिए ढेर सारी गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट एंड ऑफकोर्स मिर्चीदार बैंगर्स जो मैं प्ले करने वाली हूँ बीच बीच में, और बीच बीच में मैं भी आती रहूंगी। अभी फिलहाल तुम ये सुनो, एंजॉय करो और मुझे जाकर फॉलो भी कर लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी चाहिए 9033647244। अब दोस्ती अपनी पक्की हो चुकी है, तो स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

हिस्ट्री में ना कुछ डेट्स ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा खास होती है, और ढूंढा जाए तो हर दिन हिस्टोरिकली काफी खास होता है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, एंड लेट्स फाइंड आउट आज के दिन क्या हुआ था। 768 में शार्लमेन और कैरलमैन बेन ज्वाइंट किंग्स बने थे, मतलब की पावर शेयरिंग कोलैबोरेशन पर चला था उस साल। 1446 में कोरिया का हांगुल अल्फाबेट पब्लिश हुआ, फाइनली वर्ड्स को अपनी खुद की स्क्रिप्ट मिल गई। 1635 में रॉजर विलियम्स को मैसाचुसेट्स से बैनिश कर दिया गया उनके रेडिकल रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज की वजह से। लगता है आजकल भी ऐसे कुछ हो रहा है दुनिया में। 1701 में येल यूनिवर्सिटी चार्टर हुई, तो कॉलेज के असाइनमेंट्स और ऑल नाइटर्स की हिस्ट्री काफी पुरानी है भाई। 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन बना, लेटर्स को दुनिया भर में भेजने का सिस्टम बेटर हो गया। आज व्हाट्सएप के जो ब्लूटिक्स है ना, वो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन है। 1962 में युगांडा को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला, और 1963 में इटली में वाजोंड डैम के पास मैसिव लैंडस्लाइड से डेडली वेव आई जिसमें लगभग 2000 लोगों की जान चली गई। 1967 में रेवोल्यूशनरी शे गुवेरा को बोलिविया में एग्जीक्यूट किया गया। 1986 में द फैंटम ऑफ द ओपेरा ने लंदन के वेस्ट एंड पर स्टेज डेब्यू किया। एक तरफ रेवोल्यूशन, दूसरी तरफ थिएट्रिकल ड्रामा, वाह क्या सीन था। 2004 में अफगानिस्तान ने अपना पहला डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और 2012 में पाकिस्तान की यंग एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गई। लड़कियों की एजुकेशन के लिए उनकी आवाज आगे चलकर दुनिया में काफी गूंज रही है। और ये है आज के दिन की, यानी कि अक्टूबर 9th की हिस्ट्री। और आज का फ्यूचर है, आगे सुनने वाले हो तो मिर्चीदार बैंगर्स मेरे यानी कि प्रिसला के साथ, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से नोट करो मुझे सोशल्स पे कहाँ फॉलो करना है। इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: करना चाहते हो और उसके बारे में काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो अगला अपडेट तुम्हारे लिए है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची लिसनर्स, समीर डेनी, सीईओ ऑफ एसटी कैपिटल फंडिंग विद योर एसटीसीएफ मॉर्गेज मार्केट अपडेट। सम गुड न्यूज़ टू सेंड यू इनटू द वीकेंड। रेट्स इंप्रूव्ड यस्टरडे, द 10-year ट्रेजरी नोट पुल्ड बैक टू इट्स लोवेस्ट लेवल्स इन अबाउट अ वीक आफ्टर अ ब्रूटल 7-week क्लाइम। वी'ल टेक इट, बट व्हाट टर्न्ड इट? स्ट्रांग डिमांड एट दिस वीक्स गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शंस, प्लस वर्ड दैट द यूएस वोंट स्ट्राइक Iran before the November elections, which cooled oil prices. Both outweighed a Fed that's still warning more hikes may come. But here's something to chew on this weekend that almost no one is talking about. Right now, because rates are higher, a lot of buyers are sitting on the sideline. That means less competition, fewer bidding wars, and sellers who actually are willing to negotiate. You've got leverage right now that disappears the moment rates drop, because then everyone floods back into the market and prices jump. So here's the smart play. When you find the right home, lock in a good price while you've got the upper hand. Because the price is forever, the rate is only temporary. You can always refinance later. You can't renegotiate what you paid for. And here's how to keep the payment comfortable in the meantime, our buy down program. It drops your rate nearly a full percent or more for the first year at no cost to you. So your payment works now while you wait to refinance even lower down the road. So if you're house hunting this weekend, reach out to me. Call or text me anytime and I'll run real numbers for you on the spot. My number, 908-227-6042. Or visit us at stcapitalfunding.com. This is Samir Dedia with your STCF Mortgage Market Update. Welcome home and happy house hunting.
0: तो घर बैठे बैठे तुम्हें मॉर्गेज अपडेट तो मिल गया। अब ये भी पता कर लो मुझसे कैसे कनेक्ट करना है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा हैंडल नेम है इंस्टाग्राम और एक्स पर मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

कि प्यार के साथ थोड़ा जैकेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये पता करने का टाइम आ चुका है। नो गेस वर्क नीडेड। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में वेदर अपडेट लेकर आई हूँ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 47 डिग्रीज फारेनहाइट, बट हवा की वजह से फील हो रहा है 44 डिग्रीज फारेनहाइट। तो प्लीज सिर्फ कैलेंडर देखकर समर आउटफिट मत निकाल लेना, ओके? दिन में सनशाइन होने वाली है, टेम्परेचर क्लाइम करेगा टू अ लवली 72 डिग्रीज फारेनहाइट। परफेक्ट वेदर है फॉर वॉक आउटसाइड कॉफी या फिर वो इंस्टाग्राम पिक्चर्स खींचने का जिसका कैप्शन होगा लिविंग माई बेस्ट लाइफ वाइल सीक्रेटली चेकिंग वर्क ईमेल्स, जो हम सब करते हैं। रेन की टेंशन है अगर तुमको तो ऑलमोस्ट जीरो टेंशन कर दो, डे टाइम में रेन का चांस नहीं है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी सिग्निफिकेंट रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। विंड्स जो है वेस्ट से अराउंड 5 to 11 माइल्स पर आवर चल रही है। तो आज हेयर को फ्री ब्लो ड्राई मिलने वाला है बाहर निकलोगे तो, लेकिन रिजल्ट्स गारंटीड नहीं है, वो तुम अपने हिसाब से लगा लेना। बट लिसन, शाम को क्लाउड्स जो है वो बढ़ने वाले हैं और ओवरनाइट टेम्परेचर जो है वो काफी डिप करेगा, 46 to 50 डिग्रीज फारेनहाइट तक जा सकता है। सो लेयर के प्लेयर बनना आज तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और मिड डे में सन जो है वो बाहर आ जाएगा तो तुम्हें अपना SPF 50++++ लगाकर ही बाहर जाना है, बिकॉज यू गॉट टू केयर फॉर योर स्किन मैन। सनसेट होने वाला है 6:26 PM पर, यानी कि गोल्डन आवर्स सेल्फी के लिए टाइमिंग परफेक्ट है। और परफेक्ट टाइम है टू फॉलो मी, चेक आउट माई सोशल्स, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाइल यू डू दैट, लेट मी रिमाइंड यू कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, और साथ साथ में मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो तुम। 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। ड्रॉप मी अ मैसेज राइट नाउ, जब तक मैं चलाती हूँ तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi, it's hot.

0: तीन अपडेट्स जानने का टाइम आ चुका है. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. सबसे पहले देसी आईटी प्रोफेशनल्स, ये अपडेट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है. यूएस ने कॉग्निसेंट, इंफोसिस, टीसीएस समेत 8 टेक कंपनीज को पीईआरएम ग्रीन कार्ड प्रोसेस से सस्पेंड किया है. इन्वेस्टिगेशंस के बीच इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये मूव दोनों कंट्रीज की शेयर्ड एम्बिशन को आगे नहीं बढ़ाता है. इम्पोर्टेंट बात यह है कि पर्म H-1B वीजा से अलग है. इस सस्पेंशन से एग्जिस्टिंग H-1B वीजाज ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होते हैं. दो एलिजिबल एम्प्लॉयज के ग्रीन कार्ड प्रोसेस पर असर पड़ सकता है. सो फिलहाल पैनिक की जरूरत नहीं. अपने इमिग्रेशन लॉयर से अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन को समझो. डिटेल्स मैटर करती हैं. व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर यकीन मत करो. नंबर टू पर, जेवार में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम देने का प्रपोजल उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिसीजन की अनाउंसमेंट की है. मतलब कि नेक्स्ट टाइम इंडिया की फ्लाइट बुक करते वक्त डेस्टिनेशन का नाम अपडेट करने से पहले टिकट डिटेल्स डबल चेक करना बनता है. एंड लास्टली, साउथ अफ्रीकन जूरिस्ट नावनेथन नावी पिल्लई को 2026 का नोबेल पीस प्राइज मिला है. इंटरनेशनल लॉ और पीस को प्रमोट करने के उनके काम के लिए वो 287 नॉमिनीज में से सिलेक्ट हुई हैं. पिल्लई एज अ वुमन ऑफ इंडियन तमिल ओरिजिन हैज हैड अ डिस्टिंग्विश्ड करियर इन ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल जस्टिस. अ रिमाइंडर दैट इंपैक्ट की कोई नेशनलिटी नहीं होती और जस्टिस के लिए आवाज उठाना ऑलवेज मैटर्स. एंड दैट वाज मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. Stay tuned and stay hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ मैं सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और गरबा के स्टेप्स परफेक्ट हो गए हैं, तो लक के स्टेप्स को आज आजमाया जाए, बिकॉज मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिल रही है गोल्ड चेन्स। यस, दैट रियल गोल्ड, नॉट समथिंग दैट समवन प्रॉमिस्ड एंड नेवर गिव इट टू यू। इट्स टाइम फॉर मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। नवरात्रि के 9 रातों को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हर दिन जीत सकते हो तुम प्रेशियस गोल्ड चेन। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। पहला काम ये करना है कि अपना व्हाट्सएप खोलना है, उसके बाद नवरात्रि टाइप करना है, और उसके बाद अपने पूरे नाम के साथ उसे भेज देना है 9033647244 पर या 9033 मिर्ची पर। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। लिखो नवरात्रि, अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ भेजो अभी के अभी, और फिर हो जाओ रेडी मेरे फोन कॉल के लिए। ऑलराइट, अभी फेस्टिवल की शॉपिंग कर ही रहे हो तो विजिट करो वीरानी ज्वेलर्स, जो कि ओक ट्री रोड पर है, जहां पर स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। और डिटेल्स के लिए veeraniejewelers.com पर जाकर विजिट करो। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ मैं सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: बर्थडे गैंग, वेयर आर यू? आज जिसका भी हैप्पी वाला बर्थडे है, सबसे पहले ढेरों बधाइयां। आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, केक तुम्हारा, अटेंशन तुम्हारा, और कैलोरीज, आज कैलोरीज काउंट नहीं होती है। और अब काउंट करने वाले हम कि आज कौन से सुपर सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इंडिया से बात करते हैं, शायोनी गुप्ता From Four More Shots, please. वही fabulous actress है, she's turning 41 today. और legendary सरोद maestro उस्ताद अमजद अली खान का भी आज 81st birthday है. International birthday squad में John Lennon from Beatles and also Guillermo del Toro, the filmmaker behind The Shape of Water और Jacob Batalon, यानी कि Spider-Man का bestie Ned. Happy birthday to everyone. अगर तुम्हारा भी आज happy birthday है, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए special wish है कि may your year be full of प्यार, पैसा, promotion and ढेर सारे gifts. और gifts की बात चली है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए contest है नवरात्रि रिलेटेड। मिर्ची के साथ 9 लकी विनर्स जीत सकते हैं गोल्ड चेन्स। इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार, जहां नवरात्रि की हर रात को तुमको मिल रही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेशियस गोल्ड चेन जीतने की। और ये मौका जाना नहीं चाहिए, इसलिए फटाफट से पहला काम ये करो कि व्हाट्सएप खोलो, नवरात्रि टाइप करो, उसे अपने पूरे नाम के साथ भेज दो 9033647244 पर राइट नाउ। या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, MIRCHIPRIS। अपना पूरा नाम लिखो नवरात्रि लिखने के बाद, और फोन नंबर लिखकर मुझे इंस्टा पर डीएम कर दो अभी के अभी। और ओकट्री रोड पर वीरानी ज्वेलर्स के फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स को चेकआउट करके आओ, 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर वहां पर बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, या फिर विजिट करो virani jewelers.com पर। अभी मिर्चीदार बैंगर्स चलाते हैं तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: कुड़ी कहती बेबी पहला जगुआ ले लो, फेल जिन्ना मर्जी पिया ले लो,

0: तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसला और अब सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट।
1: rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,175. $4,175 per ounce के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बनता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करें। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, प्लैटिनम रिंग में सेट। आइए राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें 0% इंटरेस्ट पे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ आप आज अप्रूव होने पे गोल्ड ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे राज ज्वेल्स की टीम को दे सकते हैं। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू गो, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। अगर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी सिचुएशन के बीच इंडियन एम्बेसी ने रियाद में इंडियन नेशनल्स को अलर्ट रहने की, जरूरत पड़ने पर इंडोर्स रहने की और लोकल अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने को कहा है। एम्बेसी ने ये भी अपील किया है कि अटैक से रिलेटेड अनवेरिफाइड वीडियोज और न्यूज को फॉरवर्ड ना करें। नंबर टू पर न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन से मार्वल ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स दिए हैं। विजन क्वेस्ट अक्टूबर 14 को प्रीमियर होने वाली है और नई स्पाई थ्रिलर सीरीज ज़ोडियाक 2028 के लिए प्लान की गई है। और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 2 अभी जनवरी 2026 में आ रहा है। एंड लास्टली वेटरन एक्टर नाना पाटेकर जी का 75 ईयर्स की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद इंतकाल हो गया है। उनका अंतिम संस्कार पुणे में फुल स्टेट ऑनर्स के साथ किया गया है। नाना पाटेकर अपने डायलॉग डिलीवरी, पावरफुल परफॉर्मेंस और अनफॉरगेटेबल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए हमारी हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। एंड दैट्स मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ऑलराइट, स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड लिसन टू मी. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब बात करने वाले हम राशियों.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: इट इज यानी कि मेष राशि. पास का इमोशनल बैगेज अब चेक आउट करने का टाइम आ चुका है. डिप्लोमेसी यूज करो हर बात पे. कोर्ट रूम ड्रामा जरूरी नहीं होता है. लकी कलर टील है. लकी नंबर इज 6. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एनर्जी हाई है, आइडियाज फ्रेश है. आज रूटीन को थोड़ा सा रीमिक्स करो. हो सकता है बेस्ट आइडिया कॉफी के सेकंड सिप के साथ आ जाए. लकी कलर इज मस्टर्ड. लकी नंबर इज 3. जेमिनी यानी मिथुन राशि, अनएक्सपेक्टेड इनवाइट्स और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस इनकमिंग. ड्रामा को स्किप करो. लाइफ ऑलरेडी हैज इनफ प्लॉट ट्विस्ट. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर है 9. कैंसर यानी कर्क राशि, घर पर चिल करो यार. फ्यूचर प्लान्स बनाओ. हर चीज में रॉकेट लॉन्च करना जरूरी नहीं होता. कभी कभी सोफा पर बैठकर सेल्फ केयर करना ही बेस्ट होता है. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, शॉर्ट ट्रिप्स, न्यू फेसेस और क्रिएटिव वाइब्स. बस थोड़ा सा नॉइज से दूर होकर अपने थॉट्स को सुन लो. लकी कलर इज कॉपर. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, मनी और बिलोंगिंग्स पे नजर रखो. वाइल करियर कॉन्फिडेंस बिल्ड्स, बजट को चेक करो. बैंक बैलेंस को सरप्राइज पार्टी मत देना. ओके. लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन. लकी नंबर इज 8. एंड दैट इज फर्स्ट 6 राशिज. बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसला और मुझसे कनेक्ट करना है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: स्टार्स हैव एंटर्ड द ग्रुप चैट. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो पार्ट जहाँ पे तुम्हारी राशियों के बारे में हम बात करते हैं.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: यानी कि तुला राशि. मून, यूरेनस एंड मार्स आर टर्निंग अप द एक्साइटमेंट इन पार्टनरशिप्स. इंपल्सिव प्लान्स, फन, इंपल्सिव टेक्स्ट. मे बी पहले ड्राफ्ट अच्छे से पढ़ लो, देन सेंड लेटर. लकी कलर इज ब्लू. लकी नंबर इज 7. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. यू मे फील लाइक स्पीकिंग योर माइंड टुडे. गो हेड, बट कीप द स्टिंग आउट ऑफ योर वर्ड्स. ऑफिस कॉलीग्स जो है वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं है तुम्हारे साथ. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 4. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. फ्रेंड्स मे स्विच अप द प्लान एंड ट्रैवल और चांस एनकाउंटर्स could surprise you. Keep an open mind and your phone charged. Lucky color is saffron. Lucky number is 5. Capricorn yani makar rashi. Steady wins today. Handle responsibilities one step at a time. Rome wasn't built in a day and neither is your to-do list. It's not gonna get shorter by staring at it. Lucky color hai charcoal gray. Lucky number is 10. Aquarius yani kumbh rashi. Discipline could open doors to careers and financial opportunities. Big dreams are great, lekin follow through is the real flex. Lucky color is turquoise. Lucky number is 11. Pisces yani ki main rashi. Financial gains look possible, lekin keep your ego in check with loved ones. Winning an argument is nice, lekin winning peace at home is much much much better. Lucky color is coral. Lucky number is 12. And that's your Rashi Zone Part 2. Main hoon Prisila, tumhare saath mein. Mirchi Mornings chal raha hai. And now you can check out my socials, Instagram or X pe. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

बट होल्ड ऑन, नवरात्रि के लिए डांडिया ले लिया, आउटफिट सेट कर लिया, डेट्स भी पक्की कर ली है, लेकिन अपनी किस्मत पे थोड़ा सा क्लिक क्लिक आजमाया कि नहीं आजमाया, वो मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे आजमाना है। इमेजिन करो नवरात्रि की 9 nights और तुम्हारे पास हर रात को है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जीतने का कुछ चमचमाता हुआ, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर। कैसे? लेट मी टेल यू, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, और मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिल सकती है गोल्ड की चेन। यस, यू हर्ड दैट राइट, मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। 9 नवरात्रि की नाइट्स है, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, हर रोज प्रेशियस गोल्ड चेन्स जीतने का चांस तुम्हें मिल रहा है, मतलब कि इस बार माता रानी की कृपा जो है तुम पर बनी हुई है, गोल्डन ब्लिंग ब्लिंग भी घर पर आ सकता है। यस, इसे जीतना इतना ही ज्यादा सिंपल है और पार्टिसिपेट करना उससे भी ज्यादा सिंपल है। पहला स्टेप ये है कि व्हाट्सएप करो अभी के अभी, लिखो नवरात्रि, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखो और उसे भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। और दूसरा काम ये कर सकते हो कि इंस्टाग्राम खोलो, मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। नवरात्रि टाइप करो, अपना पूरा नाम और फोन नंबर लिखकर मुझे भेज दो मिर्ची प्रिस पर, दैट इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, और उसके बाद वेट करो मेरे कॉल का। एंड व्हाइल यू आर वेटिंग, और फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, उसकी शॉपिंग भी कर ही रहे हो, तो वीरानी ज्वेलर्स को विजिट करो ओक ट्री रोड पर, जहां पर स्पेशल अमेजिंग ऑफर्स चल रहे 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। ऑनलाइन पता करना है तो veeranijewelers.com इज द प्लेस जहां पर जाकर तुम विजिट कर सकते हो। और अभी मेरे जाने का टाइम हो गया, टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, खाओ पियो ऐश करो और मिर्ची सुनते रहो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mitchy. It's hot.
1: दिन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।